0: जसलो पाथ नेपाल सम्बचिन्छ सौ पी खुद अनलाथो एकादशी थो रेडियो नेपाल ख आन्यना दिश जिरुबी पखे नेपाल भाषा या समाचार। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह व अर्थमन्त्री डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले नापा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सभापति रवि लामिछाने दथुई जेठ 14 गते गर्ने वैको आर्थिक दया बजेट विषयस सहल व्याका दिगुदु। प्रधानमन्त्री व मन्त्री परिषदीय कार्यालय सिंह दरबारे मिग शनि ल जुगु नाप्लाई च्यासोले वैगु बजेट या त फिङ्केगु विशेष सहल जुगु प्रधानमन्त्री सचिवालय थागु ख नाप्लाई च्यासोले सभापति लामिछाने या वया चङ्गु भारत भ्रमण र संसदीय प्रधानमन्त्री शाह क घाइको विषय नापा सहलह जुगु ख। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह वास्तविक व खने दैगु याना मनुतेगु निथया जीवन थकायता सरकार प्रतिबद्ध छु यागु कना दिगुदु। प्रधानमन्त्री व मन्त्री परिषदीय कार्यालय मिग ये व नु दिल्ली युरोपेली संघ यु व दुज राष्ट्रिय राजदूत व ये दुगु थिथि दे या राजदूत पिन्ना पाँजुगु मङ्का ज्यासोले प्रधानमन्त्री शाह आ मागु थपिनिस थपिन्ता क घागु फाला पूर्ण कथं कुबिया चुनाको धेया दिगु ख नाप्लाई ज्यासोले प्रधानमन्त्री शाह नेपालले आफू अङ्कगु निर्वाचन लिचोस सुशासन व समावेशी आर्थिक समृद्धि नीति ध्वात्विक निर्णायक जनादेश बिगु धेया दिगु प्रधानमन्त्री सचिवालय धागुदु। नेपाल नीति स्पष्ट व अनुमान योग्य जुइगु सुनिश्चित यासे प्रधानमन्त्री शाह लोकतान्त्रिक मु मान्यता यता संरक्षण व राजनीतिक स्थिरता लिङ्का त्यता पूर्ण कथा प्रतिबद्ध जुयागु कना दिगुदु। उगु नाप्लाई ज्याचोले ये वनहु दिल्ली युरोपियन युनियन या राजदूत पि व ये दुगु मेगु राज मे पि राजदूत नापा या शान्ति नक्सा चुनाव फोङकगु धासे नेपाल या त सोचा दिगु खसा वेक पिस सुशासन आर्थिक विकास व समृद्धि म्यान्डेट नापान हो गु सरकार या नेतृत्व खे थेङ्गु धका प्रधानमन्त्री सहायता शुभेन्दना दिगुदु। प्रतिनिधि सभा मिगया बैठकै पर्यटन विधेयक 2082 दथे विचार यामा धैगु प्रस्ताव सर्वसम्मति स्वीकृति आगुदु। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री खड्गराज पौडेल पर्यटन विधेयक 2082 दथे विचार यामा धैगु प्रस्ताव न्यवया दिगु ख न्यवगु प्रस्ताव दथे सैद्धान्तिक सहल सम्पत्ति कापी सांसद पिन्स पर्यटन लागाया सेन लागु विकास नीति नुगु पर्यटकीय लपुमाले मागु पर्यटन व्यवसाय यता जनता या जीवनशैली नापा स्वयमागु लकस संरक्षण व सांस्कृतिक हस्तान्तरण या त नाप्नापा यङ्के मागु नापाया विशेष सूचना बिजा बियादिगु ख अध्ययन सांसद पिन्स पर्यटक या त पर्यटन या त देय मु आर्थिक पूर्वाधार या कथम विकास या त नीतिगत सुधार मागु ध्याय दिल थ्यान्या प्रतिनिधि सभा मेगया बैठकै प्रतिपक्षी दल तेस प्रधानमन्त्री संसदे प्रधानमन्त्री संसदे लुहङ्गु नेसते गुलिस बी मागु सदन या त उत्तरदायी देखे मागु धासे बैठक पना दिगु ख प्रतिपक्षी दल तेगु पङ्ग दथी संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री खड्गराज पौडेल पर्यटन विधेयक 2082 दथी विचार यामा धैगु प्रस्ताव न्यवया दिगु ख बैठकै सांसद पिसान तराई लाग्या ताप्ला न्याव निथया जनजीवन थाकुया वङ्गुली निपे गाउँसँग मत आपूर्ति अनिवार्य यायता बर्खाया हुने थिति लागा विस्थापित मनुते त थत्थे उद्धार राहत पुनस्थापना यायता सरकारी ध्यान कोसला दिगु खस सांसद पिसा गामे बु बाँचो दैगु झो उपया चोङ्गु गामे ल्याम मदया वङ्गु लिताकया दुःख पोङ्कु से सामुदायिक बुज्या यायता ओ ल्याम त्यता आकर्षित याना जैविक प्राकृतिक उत्पादन यायता आदिवासी जनजातीय परम्परागत ज्ञान सिप या त मा कथा छेला बुला या त बव्या दिगु ख अध्ययन सांसद तेस विश्वव्यापी मूल्य वृद्धि व पेट्रोलियम पदार्थ या मु मोडिक आपल जुया चोङ्गुलि जोला ढुवानी या त हाथ्या जुया चोङ्गु व न्या गुलिना हाथ्या जुया चोङ्गुलि सरकार या ध्यान कोसला दिगु दुछ सीमा लाग्या मनुते त अपुइगु कथा निथया छेलाबुला न्यागु मिगु वे उनीगु व्यवस्था मिल्याना बिता मिसा विरुद्ध कुप्रथा व विभेदकारी कानुन भिङ्के मागु माक व्यवस्थापन संवेदनशील जुई मागु नापाया विशेषण संसद सरकारी ध्यान कसला दिगु खस न्यभोगु प्रस्ताव दथि सैद्धान्तिक सहलाय दथि प्रतिपक्षी दल तेस दिना चोङ्गु पङ्ग देधुङकानी सभामुख डोल प्रसाद अर्याल बैठक झिङ्यागु नेट्या नीति दिकादी गुख निकगु खुची न्यागु बैठके नापा विपक्षी दल ते गुपङ्ग लेनाचुने धुङकानी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रमुख सचेतक कविन्द्र बुर्ला कोटी प्रधानमन्त्री बालेन शाह छवा दुने सदन्य बुति काइगु जानकारी ब्यादिला विपक्षी दल या संसद पिसम प्रधानमन्त्री संसदे बुति क्याता सभामुख रुलिङ या त माग्या धुङकानी सभामुख डोल प्रसाद अर्याल प्रधानमन्त्री शाह सदन जानकारी ब्यादिगु ख सभामुख अर्याल सदन ह्याचुङ्गुहे दि प्रधानमन्त्री या त सती गु हेथना दिस प्रधानमन्त्री या इवो मिति को छिनागु जानकारी वे धुङकानी वे कथा मिति वो ई घोषणा या गुना पान्थ्वाथिका दिल थुयानीय प्रतिनिधि सभा या मेघिया बैठके संसद पिसा भूगोल क्षेत्र कथा ताप्ला बर्खा वो चलैया हुने लिचो लाइपी मनु ते त मागु कथा व्यवस्थापन या त सरकार या ध्यान कोसला दिगु ख सर्वोच्च अदालत नेपाली नेहना चङ्गु मुद्दाके विदेश अनलाइन पाखे बयान बकपत्र याके फैगु आदेश आगु दु न्यायाधीश मिहरि फुयालो बालकृष्ण ढकालिया मङ्काई जलस सूचना प्रविधि छेला भौगोलिक सीमा या त ची मधङकी गु ची धङ्का चङ्गु इले न्याय सम्पादन या त अफुके गु नीति विदेश अनलाइन बयान बकपत्र या फैगु आदेश बिगु ख परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाल विदेशी दुपी नेपामी पिन्त मोफा मित्र मोबाइल एप पाके कन्सुलर सेवा क्याता इनाफ याना दिगुदु कन्सुलर सेवा विभाग मिग गोसागोको मोफा मित्र मोबाइल एप उले ज्या झोले वेक्ला सार्वजनिक सेवा यता अञ्च अपुकेता हो नागरिक मैत्री देखेता एप लिचो लाइगो भलसा पङ्का दिगुदु मोफा मित्र सेवा नेहेगु जिल्ला प्रशासन कार्यालय विदेशी दुगु फुकङ कुटनीतिक नियोग थेङ्के धुङ्कगु दुसा वैगु आर्थिक दे थो सेवा फुक्क स्थानीय तस यङ्केगु ज्याजो दुगु मन्त्री खनाल कना दिला मोफा मित्र मोबाइल एपसँग अफुको कथा अनलाइन निवेदन बी फैको व्यवस्था याना त अगुदु सरकार संघीय निजामती सेवा विधेयक या मस्यौदा हेनासङ्गु संसदीय अधिवेशनसँग पेस आयता संघीय संसदीय दर्ता यागु ज्या हेनासङ्गु दु हेनासङ्गु संसदीय अधिवेशनसँग विधेयक या मस्यौदा दुत बिगु याना आ मस्यौदा दति स्वफु दुगु निकायसँग सल्लाह कया चुङ्गु दु थिति मनु त पाखे वोगु छिदो सूचन दुथ्याका भूमि व्यवस्था सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अर्थ मन्त्रालय राय कया धुङ्क गुदु आवानिसे कानुन न्याय वो संसदीय मामिला मन्त्रालय राय कया धुङ्कानी लोकसेवा आयोग या परामर्श कया धुङ्कानी मस्यौदा मन्त्री परिषद जुसे संसदीय दूत बी गुज्या जुयासङ्गु मन्त्रालय प्रवक्ता एकदेव अधिकारी कना दिल संसदीय नेनासङ्गु अधिवेशन सहे विधेयक मस्यौदा दर्ता यागु याना ज्याजुया चङ्गु न वेक्ला जानकारी ब्यादिल प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह या राजनैतिक सल्लाहकार नापा संविधान संशोधन बहस पत्र देके त निसुङ्गु कार्यदल या संयोजक असीम शाह सरकार निजी लागा मैत्री नीति कया निजना चङ्गुले व्यवसाय त्यता निर्धक्क जुया व्यवसाय सञ्चालन न्याय त इनाफ याना दिगुदु प्रधानमन्त्री व मन्त्री परिषद या कार्यालय उद्योग वाणिज्य नापा निजी लागा नापा स्वपु दुपी मनुत नापा संविधान संशोधन या विशेष मिग सूचना कायागु झोले संयोजक शाह निजी लागा नापा सहकार्य मयासे देय आर्थिक विकास ता मलाइगु ली सरकार थो विशेष जानकार जुगु न जानकारी ब्यादिल स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय सर्प ज्ञाना चुङ्गु धका सचेत जुइता इनाप्यागुदु तानुगु उपेवा सर्प फलाम पिहा वैगु व मनुतेता न्याइगुली सर्प न्याइगु पाखे तापाता मन्त्रालय इनाप्यागु ख शुक्रबार ट्रपिकल व सरुवा रोग अस्पताल निर्देशक डाक्टर अनुप हस्तला तानुए व अस्पतालले सर्पङ्याना चोपी बिरामी त यको वया चोङ्गु कना दिला वेक्लाङ कार्बे धादिङ तनहुँ रामेछाप दोलखा नापा जिल्लासँग सर्पया लोगिपि यको वया चोङ्गु कना दिगु ख सर्प न्यासा न्यागु थासे छुन मयासे सर्प न्यागु थासे च्यागु चुचुप्यागु चिएगु ज्या मया त व मलम रासायनिक पदार्थ क्वागु खुवामुगु जोल मछेले त नापा इनाप्याना दिगु दुसा सर्प न्यागु थ्या मसिका बिरामी या त गुलिफु उली याक्न अस्पतालले ठेङ्के त डाक्टर बास्तोला इनाप्याना दिगु ख सूचना तथा संचार मन्त्री डाक्टर विक्रम तिमल सिन्हा मन्त्रालय मातहत्या संचार संस्था तेगु दक्षिया लेखा परिचन याक्न पुङ्केता ता इलनिसे लोने त ल्याउ दौगु बक्यौता ढेवा असुली प्रक्रिया त तचोका निजाकेता उजाम ब्यादिगुदु मिग संस्था प्रमुख नापा मन्त्रालय जुगु सलय झोले मन्त्री डाक्टर तिमल सिन्हा दे निसे लेनाचुङको लेखा परीक्षण ओ बक्यौता व्यवस्था या त थ्या बिता उजाम ब्यादिगु संचार मन्त्री डाक्टर तिमल सिन्हा ओ संस्था तेगु लोने त ल्याउ दुगु ढेवा असुलिया नीति थ्वाथिक ज्याथल देखेता माचा कानुन प्रक्रिया निजाकेता ओ नियमित अनुगमन या त उजाम मनोतेगु अनलाइन बैंकिङ प्रणाली ह्याक याना ठेवा खुइगु झाँका उपजुया चङ्गु दासे अनलाइन ठगी नियन्त्रण नीति नीतिगत सुधार मागुली सांसद भव्यादिगु दु सन्तपी जेएनजी आन्दोलन या झोली घापा जुपी ल्यामतेगु आधारे वर्गीकरण याना लजका वास खर्च व राहत या प्रबन्ध मिले या मागु ओ नेपाली कासामी ओ कासा लगायत सेलाकेता अझ उपथ्याबितान नुगो कोसला दिगुख रोल्पाया थवाङे ताकु फसा सीमा कोदया वो सीमा काना निमा मनु सी गुदु सिपीले थवाङ गाउँपालिका दुई हेलो वाङ या खुइ द दुमा रुजु झाँक्री हो वोहे थासे दुमा ङे द दुमा मन बुझी झाँक्री जुगु रोल्पा प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक सुनिल थापा नेपाली जानकारी ब्यादिगु ख सिन्धुलिया इलाका प्रहरी कार्यालय खुर्कोट्या हिरासत कुना तमा मनु सी ढुङ्कानी प्रहरी प्रहरी उपरीक्षक निशा प्रहरी जवान तक झिमस्ता कारवाही या सिफारिस या गुदु सिन्धुलिया सुनकोशी गाउँपालिका तिन जुम्ली डाँडाचोनीमा निसौँ दुमा श्रीकृष्ण बिक हिरासते कुना तगु इलेहे सिगु चाका या दुवा लेता निसोङको प्रहरी नायब महानिरीक्षक दिनेश कुमार आचार्य नेतृत्व छानबिन समिति कारवाही या सिफारिस यागु ख आदेशमा पिने अबुख इजरायली सेना लेबनान याना चङ्गु आक्रमण लाना मोतिन सुई छमा मनु सी गुदु सेना पूर्वी दक्षिण लेबनान यागु हवाई आक्रमण थोलियाके मनु त सिगु अनया अधिकारी पिसन थाकु ख इजरायल प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहु हिजबुल्ला दति आक्रमण तचोके धुङ्कानी तचोकेको घोषणा या हो लडाकु विमान पूर्वी र दक्षिण लेबनान मड्डीको हवाई आक्रमण याना चङ्गु अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यम पेसन थाकुदु आ मौसम या जानकारी थौ कोशी मधेस प्रदेश नापा बागमती ओ गण्डकी प्रदेश या हिमालय पहाडी लगाया छुन थासे लुम्बिनी प्रदेश या हिमालय पहाडी लगाया मो थासे व बागमती गण्डकी प्रदेश या तराई या थासे कर्णाली ओ सुदूर पश्चिम प्रदेश या हिमालय पहाडी लगाया छगु निगु थासे वा वैगु सम्भावना कुबिगु थागुदु सुदूर पश्चिम व लुम्बिनी प्रदेश या तराई लगाया क्वागु फे न्याइगु थागुदु स मधेस प्रदेश नापा कोशी बागमती ओ गण्डकी प्रदेश तराई ओ पहाडी लाग्या मो थासे निने निसे ताकु फे उइगु सम्भावना कुबिगु थागुदु वङ्गु नि पे घौले ये सोनी गले क्वाज सुइगु डिग्री सेल्सियस दति चोङगु खसा थाउ निने ये सोनीका क्वाज नि गुगु निसे सुई छगु डिग्री सेल्सियस दति चोनीगु टुकुमा दु थाउ सुथे ये सोनी गले सुतस्या न्याता इजुया पेङ्गु मिनेटे लुया वगु सूर्य शनि ल खुता इजुया ङे गुगु मिनेटे बी रेडियो नेपाल नेपाल भाषा या समाचार पुवन चिता अहिले नेपाली भाषा या समाचार नेना दिस सुभा
1: संगठित संस्थामा कार्यरत कर्मचारी तथा कामदारको निवृत्त जीवनलाई सुरक्षित बनाउन नागरिक लगानी कोषले सञ्चालन गरेको योगदान वा गैर योगदानमा आधारित उपदान तथा पेन्सन योजनामा सहभागी हौ दीर्घकालीन दायित्वलाई व्यवस्थापन गरौ
2: नागरिक लगानी कोष

नली नलाई खन्ना भनी राना जो नली नलाई खन्ना भनी यति राम्रे पातालीलाई यति राम्रे पातालीलाई अघि नलाई जान्न भनी राना जो अघि नलाई जान्न भनी त्यही तला सिमसाराईमा त्यही तला सिमसाराईमा

0: हजुर निरामी भाजु मेस्मी चिकिम छे निनाचु नादीको ख रेडियो नेपाल अले थौ बुधबार जीवन दबु प्राविधिक पासा पराग पोखरेल अले पुष्प ब्रजाचार्य नापजी उपेसुयाचना अले थौ थाना स्टुडियो स प्राध्यापक डाक्टर कविन्द्र ब्रजाचार्य झायादिगुदु लस्कुसदु कविन्द्र जु
1: सुहा
0: हजुर निनामी भाजु मेस्मी वेक नाप सल या न्हने वेक फच्चा मसिका चिकिन्त न्हवे वेक कविन्द्र ब्रजाचार्य वेक कन्सल्टेन्ट पेडेट्रिक अप्टरमोलोजिस्ट हो एकाडेमिक डाइरेक्टर लुम्बिनी मिखा इन्स्टिच्युट थन वेकलाई चाहिँ इङ्ग्लिस चुयादिकुले चाहिँ इङ्ग्लिस नेपाली न थन त्यहाँ अहिले रिसर्च सेन्टर वेकलाई चाहिँ छ म प्राज्ञिक निर्देशक कथौँ वेकलाई चाहिँ जाइनाचु नादिगु दु धासा गथिकी वेकलाई चाहिँ बुद्धिजम चाहिँ वेक पिएचडी नकथ वेकलाई चाहिँ पिएचडी न या नादिला लुम्बिनी बुद्धिस्ट अर्थात् लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय वेकलाई नकथ पिएचडी न या नादिला अहिले ऊ नि त्रिभुवन विश्वविद्यालय वेक चाहिँ बुद्धिजम चाहिँ गोल्ड मेडलिस्ट न ख तासे गतिकी वेकमा चाहिँ थन थिति कथ वेक गतिकी मिखायुपट्टि विशेष वेक विशेषज्ञ जुगु हुने चाहिँ वेकमा चाहिँ यको यको थन शिर्पा न अहिले अवार्ड न क्यादिगु दु वेक यो बच्चा मसिकेगु न्हने गतिकी वेक या त चाहिँ सोग गोल्ड मेडलले वेकलाई चाहिँ क्यादि धास चाहिँ प्रोफेसर यासु तानो ट्राभल ग्रान्ड अवार्ड हङकङ पाखेन 2018 अहिले बेस्ट पोस्टर अवार्ड अपावो हङकङ 2018 अथे थन थिति कथ वेकलाई चाहिँ एक युगको अवार्ड न क्यादि धङ्कुको दु ओलिसलिस गथेकी वेका चाहिँ छ म नेपाल पेडेट्रिक अप्थोलमोलोजी व स्ट्राउस प्रोनासन स्यासन थाक्याचन सोसाइटी वेका चाहिँ मु छ्यान्जेन ख अहिले एक्जिक्युटिभ मेम्बर वेका साग सोसाइटी अफ स्ट्राउस र पेडेट्रिक अप्थोलमोलोजी या वेका चाहिँ एक्जिक्युटिभ मेम्बर न ख अहिले वेकमा चाहिँ निगो चाहिँ थगो चाहिँ रिसर्च आर्टिकल एकदम डबल ब्लाइन्ड प्योर रिभ्यू पाएँ वेकमा चाहिँ जर्नलले वेकमा थको चोसुन पिटनादी रङ्गला धासा चाहिँ वेकमा चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कन्फरेन्स चाहिँ वेकलाई चाहिँ सिगो ज्यापोन न्यवादी रङ्गला वेक ख प्राध्यापक डाक्टर कविन्द्र ब्रजाचार्य यहाँ भाजमेजी वेकलिसे थोए विशेष निनकन यागुजी तासे वेक चोयादिगु वेक यो चोसा यो छपो नेपाल भाषा मेतयादि त जी प्राविधिक भाषा त इनापेना

0: ई रेडियो नेपाल ठीक अरविन्द्र मिश्रसँग मैथिलीमे समाचार सुनल जाय। सरकार आर्थिक वर्ष 2083-84 के राजस्व आ व्यय के वार्षिक अनुमान बजट जेठ 15 गते अपराह्न 4 बजे संघीय संसदक दुनू सभाक संयुक्त बैठक में प्रस्तुत करवला भेल अछि। प्रतिनिधि सभाक सभामुख टोल प्रसाद अर्याल आ राष्ट्र सभाक अध्यक्ष नारायण प्रसाद दहाल जेठ 15 गते अपराह्न 4 बजे संघीय संसदक दुनू सदनक संयुक्त बैठक में डॉक्टर स्वर्णिम बागले सरकारक आर्थिक वर्ष 2083-84 के बजट प्रस्तुत करबाक जानकारी करौलनि। ओ लोकनि बजट प्रस्तुत होबसँ पहिने 3:45 पर सांसद सबके बैठक हॉल में उपस्थित भ आसन ग्रहण कऽ सकबाक आग्रह कयलनि। जेठ 15 गते अर्थमंत्री डॉक्टर स्वर्णिम बागले आर्थिक वर्ष 2083-84 के बजट दुनू सभाक अलग अलग बैठक में टेबल करवला छथि। प्रतिनिधि सभाक आजुक बैठक राष्ट्रसभा में उत्पत्ति भेल चलचित्र विधेयक 2082 सर्वसम्मति से स्वीकृत कलक अछि। राष्ट्रसभा में उत्पत्ति भेल चलचित्र विधेयक 2082 पर भेल छलफल में उठल विषय में जवाब दैत सूचना तथा संचार मंत्री डॉक्टर विक्रम तिमिल सिन्हा पर्याप्त छलफल का विदेशी आ एक फिर से सुनल जाए डॉक्टर विक्रम तिमिल सिन्हा पर्याप्त छलफल का विधेयक के मजबूत आ समय सापेक्ष बनाकर आगू बढ़वाक बात बतौलनि। ओ एहिसँ पहिने सरकार द्वारा आनल गेल राष्ट्रसभा में उत्पत्ति भेला कारणे चलचित्र विधेयक में अखुनका सरकार कोनो विषय समावेश नहि कयल विधेयक ऊपर के छलफल में उठल विषय में ध्यानाकर्षण भेल बतौलनि। विधेयक ऊपर के सैद्धांतिक छलफल में सांसद लोकनि चलचित्र क्षेत्र आ कलाकार भोगऽ पड़ल समस्या समाधान करबाक विषय में विधेयक ध्यान देल जेबाक मंत्री डॉक्टर जोर दिलनि। सांसद लोकनि समावेशी फिल्म निर्माण में ध्यान देल जेबाक चलचित्र जांच बुझ आयोग प्रभावकारी बनाओल जेबाक कलाकारक योगदान के सम्मान करबा सन कानून निर्माण हेबाक बात बतौलनि। बैठक में सभामुख हरियाल विधेयक ऊपर संशोधन राखऽ चानिहार सांसद सब संघीय संसद सचिवालय बैठक शाखा में जाकर संशोधन राखि सकबाक जानकारी करौलनि। बैठक में प्रतिनिधि सभाक सचिव प्रकाश अधिकारी राष्ट्रसभा में उत्पत्ति भेल अभौतिक सांस्कृतिक संपदा संरक्षण विधेयक 2081 के संबंध में राष्ट्रसभा से प्राप्त जनसंदेश सहितक विधेयक टेबल कलन। प्रतिनिधि सभाक दोसर बैठक जेठ 15 गते शुक्र दिन अपराह्न 5:30 बैसत। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन पहिल संशोधन विधेयक 2083 पर विचार कयल जा कहि प्रस्ताव राष्ट्रसभा से सर्वसम्मति से स्वीकृत भेल अछि। एहिना मतदाता नामावली पहिल संशोधन विधेयक 2083 पर विचार कयल जा कहि प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत भेल। ई दुनू विधेयक प्रधानमंत्री एवं गृहमंत्री बालेन्द्र शाहक दिशा कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री सविता गौतम सभा में प्रस्तुत कयने छलथि। एहि विधेयक ऊपर के सैद्धांतिक छलफल में सांसद सुरेश कुमार आले मगर पदम बहादुर परियार आ खम्भ बहादुर खाती भाग लेने छलथि। छलफल ऊपर उठल प्रश्नक जवाब दैत मंत्री गौतम अपांग भेल व्यक्ति आ पाछू पड़ल क्षेत्रक विषय में सरकार गंभीर रहल उल्लेख कयलनि। राष्ट्रसभाक दोसर बैठक जेठ 15 गते अपराह्न 5:45 में बैसत। सूचना तथा संचार मंत्री डॉक्टर विक्रम तिमिल सिन्हा आ संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्गतक अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन आईटीयूक दक्षिण पूर्व एशिया तथा एशिया प्रशांत क्षेत्रक सदस्य राष्ट्रक लेल क्षेत्रीय प्रतिनिधि किशोर बाबू एरल्ला बीच आई शिष्टाचार भेंटवार्ता भेल। भेंटवार्ता क्रम में नेपालक डिजिटल प्राथमिक समावेशी कनेक्टिविटी स्थायी आ पहुँच योग्य सूचना प्रविधि विकास सहितक विषय में छलफल भेल छल। ओहि अवसर पर आईटीयूक प्रतिनिधि यरावल्ला नेपाल द्वारा आगू बढ़ाओल डिजिटल रूपांतरण अभियान के प्राविधिक नीतिगत तथा संस्थागत सहयोग मार्फत सुदृढ़ बनाओल जा सकबाक आईटीयू सहकार तथा सहयोग करय चाहल बतौलनि। भेंटवार्ताक अवसर में संचार मंत्री डॉक्टर तिमिल सिन्हा नेपाल डिजिटल पूर्वाधार विकास के सामाजिक समावेशीकरण से जोड़ कर आगू बढ़ा रहल आ डिजिटल विभाजन अंत करवा सन काज कर रहल बतौलनि। मध्य प्रदेशक प्रदेश प्रमुख डॉक्टर सुरेंद्र लाभ कर्ण मानव अधिकार मैत्री बजट तथा नीति निर्माणक संगे ओकर प्रभावकारी कारण से मात्र मानव अधिकारक रक्षा हेबा सन बात बतौलन अछि। प्रदेश प्रमुख डॉक्टर कर्ण राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग मध्य प्रदेश कार्यालय द्वारा आयोग 26वां वार्षिकोत्सव समारोहक आयोजन पुरधाम में उद्घाटन करैत ई बात बतौलनि। ओ मानव अधिकार आर्थिक आधार अधिकार संग जोड़ल गेल चर्चा करैत मानव के आधारभूत आवश्यकताक संबोधन अर्थ में निहित भेला सरकार ने मधेश प्रदेश में मानव अधिकारक अवस्था में सुधार करबाक लेल शिक्षा स्वास्थ्य में सुधार आवश्यक भेल बतौलनि। प्रदेश प्रमुख डॉक्टर कर्ण मधेश प्रदेश में गरीबी आ शिक्षा के दर उच्च रहबाक संगे आर्थिक वृद्धि दर सब प्रदेश से कमजोर भेल प्रक्षेपण भेलाक कारणे ओकर समाधानक लेल तीनू तहक सरकार नया आर्थिक वर्षक बजट से संबोधन कयला पर मात्र मानव अधिकार के रक्षा हेबाक दावी कयलनि। धनसाक प्रमुख जिलाधिकारी प्रेम प्रसाद लुटेल सुशासन बिना मानव अधिकारक कल्पना करब कठिन भेल बात राज्य सुशासन स्थापनाक लेल लायक पड़ल ओ चर्चा कयलनि। मधेश प्रदेशक नवनियुक्त अर्थमंत्री युवराज भट्टराय प्रदेश सरकारक आर्थिक गतिविधि के थप पारदर्शिताक लेल संचित कोषक विवरण साप्ताहिक रूप में सार्वजनिक करबाक निर्णय कयलनि अछि। अर्थमंत्री भट्टराय आइ मंत्रालय में पदभार ग्रहण कयलाक बाद प्रदेशक खर्च आमदनी तथा संचित कोषक विवरण साप्ताहिक रूप में सार्वजनिक करबाक निर्णय में हस्ताक्षर कयलनि अछि। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा संसदीय दलक नेता सेहो रहल भट्टराय मुख्यमंत्रीक सिफारिश पर प्रदेश प्रमुख डॉक्टर सुरेन्द्र लाभ कर्ण अर्थमंत्री पद पर नियुक्त कैल आ पद तथा गोपनीयताक शपथ करौने छलथि। मंत्री भट्टराय प्रदेश सरकारक आर्थिक अवस्था आ बजट कार्यान्वयन के विषय में आम नागरिक सबके नियमित जानकारी उपलब्ध करेबाक उद्देश्य सँ ई निर्णय कयल जानकारी देलनि। ओ सरकारक खर्च तथा राजस्व संकलन संबंधी विवरण प्रत्येक सप्ताह मंत्रालयक वेबसाइट तथा सामाजिक संजाल मार्फत सार्वजनिक कयल जेबाक निर्णय करब अर्थ मंत्रालयक सचिव राम कुमार महतो जानकारी देलनि। रोहतहाटक चंद्रपुर नगर पालिका वार्ड नंबर 9 डुमरिया में कृषि तथा जलवायु मौसम मापन केंद्र स्थापना कयल गेल अछि। केंद्रक चंद्रपुर नगर पालिकाक प्रमुख संजय कुमार काफले ई मंगल दिन उद्घाटन करैत बात बतौलनि। केंद्र किसान के मौसम संबंधी विभिन्न पूर्वानुमान अवलम्ब आ उपलब्ध कराओत। तापक्रम वर्षा हवाक गति मौसम संबंधी तथ्यांक केंद्र में संकलन होयत। मौसम के अवस्था देखकर बाली कहिया लगायब सिंचाई कहिया करब मल तथा औषधि कहिया प्रयोग करब सहितक विषय में केंद्र जानकारी देत। धनगढ़ी उप महानगर पालिका वार्ड नंबर 16 रामपुर स्थित धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्वक बहेरा बाबा में आई सँ गंगा दशहरा मेला शुरू भेल अछि। मंदिर व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष खेम बहादुर चंद आइ राति 12 बजे जल चढ़ाकर पूजा अर्चना के मेला शुरुआत करबाक परंपरा रहल बतौलनि। परापूर्व काल में ओहिठाम शिवलिंग उत्पत्ति भेलाक बाद मंदिरक दर्शनक लेल ओहिठाम आयल करैत अछि आ जे दर्शन करैत अछि ओकर मनोकामना पूरा हेबाक जनविश्वास अछि। खास कर पुत्र लाभ सँ संकट मोचन करबाधरिक शक्ति बहेरा बाबा मंदिर में रहल विश्वास भक्तजन सब में रहल अछि। बहेरा बाबा मंदिर में पूजाक लेल पड़ोसी देश भारतक विभिन्न स्थान सँ सेहो भक्तजन सब आयल करैत अछि। धनगढ़ी उप महानगर पालिकाक प्रमुख गोपाल हमाल विभिन्न पर्व त्यौहार मध्य गंगा दशहरा सेहो एहिठामक महत्वपूर्ण पर्व रहल बतौलनि। मेलाक अवसर पर उप महानगर सार्वजनिक छुट्टी देलक अछि। एहिठाम आबयवला भक्तजन सभक सहायताक लेल निःशुल्क बस संचालन कयल गेल अछि। आइ सँ शुरू भेल मेला जेठ 15 गते धरि संचालन होयत। महतरी जिलाक सदर मुकाम जलेश्वर नगर पालिका वार्ड नंबर 12 थरुआही गाम सँ विद्यालय सँ निकलल 12 वर्षीय गौतम यादव सहित 3 दिन सँ बेपता अछि। गौतम यादव जेठ 7 गते भिनसर लगभग 6 बजे घर सँ जलेश्वर नगर पालिका वार्ड नंबर 2 में अवस्थित एडवांस लर्नर्स हिमालयन अंग्रेजी बोर्डिंग स्कूल आ तकर बाद ओ बेपत्ता भेल समाचार प्राप्त भेल अछि। गौतम यादव थरुआही गांव निवासी पिता आशुतोष यादव माता पूर्णमाया यादव के बेटा अछि। विद्यालय समय सम्पन्न भ बालक गौतम घर नहि वापस भेलाक बाद परिवारजन ओही दिन विद्यालय में संपर्क कयला पर विद्यालय नहि आयल विद्यालय सँ जवाब आयल छल। पिता आशुतोष आ माता पूनम अपन बेटा विगत 7 दिन सँ बेपत्ता रहल एखन धरि कोनो पता नहि लागल। अपहरण में पड़ल आ बेचल गेल भ सकबाक आशंका करैत जिला प्रहरी कार्यालय महतरी में निवेदन दर्ज करौलनि अछि। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। नासा आर्टिमिस 2 के ऐतिहासिक चंद्र उड़ान पहिने चंद्रमा पर आधार निर्माणक लेल आवश्यक लैंडर रोवर आ ड्रोन सभक पहिल चरण के योजना सार्वजनिक करैत 4 अमेरिकी कंपनी के सैकड़ों करोड़ डॉलर के ठेका प्रदान कयलक अछि। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी मंगल दिन सार्वजनिक कयल योजनानुसार चंद्र आधार विकासक प्रारंभिक चरण में चंद्र सतह में लैंडर रोवर ड्रोन सन उपकरण सब पठाओल जायत। एहिसँ भविष्यक मानव बसोबास अनुसंधानक लेल आधार तैयार करत। रेडियो नेपाल सँ सुनै छलहुँ मैथिली भाषा में समाचार समाप्त भेल।
1: नेपाले धुम्रपान व सुर्ती दक्षी सुई पेडो मनो तसिना चङ्गो दु तर ठो लट टोटे फै
2: छि थो लट टोटे गु खसा थौ हे गोप्य व काम वाक नेनी गु सेवा क्विटल्यान्ड 1132 स्वापु तयादिस
3: थो सेवा ज्याकु इले का फै
2: वाचाका दिस धुम्रपान व सुर्तिया लट टोटे त नेनी गु सेवा क्विटल्यान्ड 1132
4: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र टेकु ये।

0: ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। सरकार द्वारा चालू आर्थिक वर्ष का आर्थिक सर्वेक्षण संघीय संसद में प्रस्तुत। नेपाल की अर्थव्यवस्था के 3.85% विस्तार का अनुमान। देश के आर्थिक और सामाजिक सूचकों में सुधार हुआ है, अर्थमंत्री डॉक्टर स्वर्णिम वागले का कथन। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने जेनजी आंदोलन संबंधी जांच प्रतिवेदन के कार्यान्वयन के लिए सरकार को भेजा पत्र। और भारत में भीषण गर्मी की चेतावनी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से आवश्यक सावधानी बरतने की अपील। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने चालू आर्थिक वर्ष 2082-83 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण संघीय संसद में पेश किया है। संघीय संसद के प्रतिनिधि सभा और राष्ट्रीय सभा की आज अलग अलग बैठकों में आर्थिक सर्वेक्षण पेश करते हुए अर्थमंत्री डॉक्टर स्वर्णिम वागले ने बताया कि चालू आर्थिक वर्ष में नेपाल की अर्थव्यवस्था के 3.85% की दर से विस्तार होने का अनुमान है। अर्थमंत्री डॉक्टर वागले ने कहा कि देश के आर्थिक और सामाजिक सूचकों में सुधार हुआ है तथा फागुन महीने तक संघीय राजस्व में 3.2% की वृद्धि हुई है। उन्होंने बताया कि चालू आर्थिक वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था का आकार 66 खरब रुपए और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय 1,535 अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। अर्थमंत्री डॉक्टर वागले ने जानकारी दी कि चालू आर्थिक वर्ष के फागुन महीने तक संघीय राजस्व 3.2% बढ़ा है। उन्होंने कहा कि संघीय खर्च में 10.4% की वृद्धि हुई है, लेकिन पूंजीगत खर्च में उल्लेखनीय सुधार नहीं हो सका है। इस अवधि में सरकार ने आंतरिक और बाह्य ऋण मिलाकर 3 खरब सार्वजनिक ऋण परिचालन किया है। बैठक में उन्होंने बताया कि फागुन तक सरकार पर बकाया कुल सार्वजनिक ऋण 78 अरब रुपए रहा, जबकि व्यापार घाटा 11.2% बढ़कर 10.98 खरब रुपए और विप्रेषण प्रवाह 37.7% बढ़कर 14.50 खरब रुपए पहुंच गया है। सरकार आर्थिक वर्ष 2083-84 के राजस्व और व्यय के वार्षिक अनुमान को बजट को जेठ 15 गते दोपहर 4 बजे संघीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में प्रस्तुत करेगी। सभामुख डोल प्रसाद अर्याल और राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल ने जानकारी दी कि जेठ 15 गते दोपहर 4 बजे संघीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अर्थमंत्री डॉक्टर स्वर्णिम वागले सरकार का आर्थिक वर्ष 2083-84 का बजट प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने बजट प्रस्तुत होने से पहले ही 3:45 बजे बैठक कक्ष में उपस्थित होने का सांसदों से आग्रह किया। इसी दिन अर्थमंत्री डॉक्टर वागले आर्थिक वर्ष 2083-84 का बजट दोनों सदनों की अलग अलग बैठक में भी पेश करेंगे। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक ने राष्ट्रीय सभा में उत्पन्न चलचित्र विधेयक 2082 को सर्वसम्मति से पारित किया है। राष्ट्रीय सभा में उत्पन्न चलचित्र विधेयक 2082 पर हुई चर्चा में उठे प्रश्नों का जवाब देते हुए सूचना तथा संचार मंत्री डॉ. विक्रम तिमल सिन्हा ने कहा कि पर्याप्त चर्चा के बाद विधेयक को मजबूत और समयानुकूल बनाकर आगे बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ये विधेयक पिछली सरकार द्वारा लाया गया था और राष्ट्रीय सभा में उत्पन्न हुआ था, इसलिए वर्तमान सरकार ने इसमें कोई नया विषय शामिल नहीं किया है। साथ ही विधेयक पर चर्चा के दौरान उठे विषयों पर सरकार का ध्यान गया है। बैठक में विधेयक पर सैद्धांतिक चर्चा के दौरान सांसदों ने देश के समसामयिक विषयों पर सरकार का ध्यान आकर्षण कराया। इससे पहले प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक में सांसदों ने किसानों के लिए समय पर खाद की व्यवस्था, आपदाओं से होने वाले नुकसान में कमी, बढ़ती नशाखोरी की समस्या, बिजली की सहज आपूर्ति सहित विभिन्न विषयों पर सरकार का ध्यान आकर्षण कराया। सांसदों ने कहा कि देश में नशाखोरी सामाजिक, आर्थिक और राष्ट्रीय समस्या बनती जा रही है तथा 30 वर्ष से कम उम्र के युवाओं में इसकी प्रवृत्ति अधिक देखी जा रही है, जिस पर समय रहते ध्यान देना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि वर्षा शुरू होने के बावजूद खाद की कमी बनी हुई है और किसानों को आसानी से खाद न मिलने के कारण खेती करने में समस्या हो रही है। सांसदों ने खाद प्रबंधन में राज्य की तैयारी को कमजोर बताया। सांसदों ने देश के विभिन्न हिस्सों में मौजूद गुठी सहित भूमि संबंधी समस्याओं का समाधान कर सभी नागरिकों के भूमि अधिकार सुनिश्चित करने की मांग की। सांसदों ने निर्माणाधीन संसद भवन में किस देश की लकड़ी का उपयोग किया गया है, इस पर प्रश्न उठाते हुए नेपाली लकड़ी के उपयोग को बढ़ावा देने तथा संसद भवन और सिंह दरबार में केवल नेपाली लकड़ी के उपयोग की व्यवस्था करने की मांग की। सांसदों ने वर्षा ऋतु शुरू होने के मद्देनजर संभावित आपदा जोखिम से देश भर के नागरिकों की सुरक्षा के लिए पूर्व तैयारी करने की भी सरकार से मांग की। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक का भी श्रम संस्कृति पार्टी के अध्यक्ष हरकराज राय ने बहिष्कार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सभामुख कार्याल ने प्रधानमंत्री बालेन शाह को संसद में उपस्थित कराने के लिए रूलिंग नहीं की। प्रतिनिधि सभा की अगली बैठक 15 शुक्रवार शाम 5:30 के लिए बुलाई गई है। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
1: ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ?
2: सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
1: यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
2: पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
1: किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटिसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
2: ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
1: सेवा सुचारू गर्नका लागि *14# डायल गर्नुहोस्।
3: नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
0: राष्ट्रीय सभा की आज की बैठक ने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन प्रथम संशोधन विधेयक 2083 तथा मतदाता नामावली प्रथम संशोधन विधेयक 2083 पर विचार किए जाने संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की ओर से कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री सुविता गौतम द्वारा प्रस्तुत विधेयकों पर सैद्धांतिक चर्चा के बाद उन्हें सर्वसम्मति से पारित किया गया। इससे पहले राष्ट्रीय सभा की आज की बैठक में सांसदों ने देश के समसामयिक मुद्दों पर सरकार का ध्यानाकर्षण कराया था। राष्ट्रीय सभा की अगली बैठक 15 शाम 5:45 बुलाई गई है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने गत 23 और 24 हुए जेंजी आंदोलन के दौरान मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित घटनाओं पर तैयार अपनी जांच प्रतिवेदन के क्रियान्वयन के लिए आज नेपाल सरकार को पत्र भेजा है। आयोग के प्रवक्ता डॉ. टीका राम पोखरेल के अनुसार घटनाओं में मानवाधिकार उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानून बनाकर कार्रवाई करने की सिफारिश की गई है। आयोग की सिफारिश में तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृह मंत्री रमेश लेखक तथा तत्कालीन सूचना तथा संचार मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग को भी मानवाधिकार उल्लंघनकर्ता मानते हुए नया कानून बनाकर कानूनी कार्रवाई करने का सुझाव दिया गया है। प्रतिवेदन में उस समय नखू कारागार में रहे राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सभापति रवि लामिछाने के जेल से बाहर आने की घटना से जुड़े व्यक्तियों के खिलाफ आगे की जांच करने की सिफारिश भी की गई है। इसी प्रकार नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी के वरिष्ठ अधिकारियों तथा काठमांडू उपत्यका के तत्कालीन प्रशासनिक और सुरक्षा निकायों के अधिकारियों के खिलाफ भी जांच और कार्रवाई की सिफारिश प्रतिवेदन में की गई है। आंदोलन से पहले और प्रदर्शन के बाद अभिव्यक्ति देने वाले अभियंताओं और संबद्ध व्यक्तियों गणेश कार्की, सुलभ खरेल, असीम मान बसनेत, भाग्य न्योपाने, टंक दहाल, विक्टर पौडेल सहित अन्य के बारे में भी जांच करने की बात प्रतिवेदन में कही गई है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने कहा है कि सतत हिमालयी पर्यटन, जिम्मेदार पर्वतारोहण तथा हिमालयी पर्वतारोहण का संरक्षण आज की आवश्यकता है। आज काठमांडू में विश्व के विभिन्न देशों से आए एवरेस्ट पर्वत आरोहियों के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति पौडेल ने कहा कि वैश्विक तापमान वृद्धि, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और पर्वतारोहण क्षेत्रों में कचरा जमा होने जैसी समस्याएं वर्तमान समय की बड़ी चुनौतियां बन गई हैं। सूचना तथा संचार मंत्री डॉ. विक्रम तिमल सिन्हा और संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार केंद्र के दक्षिण पूर्व एशिया तथा एशिया प्रशांत क्षेत्र के सदस्य देशों के क्षेत्रीय प्रतिनिधि किशोर बाबू एरा बल्ला के बीच आज शिष्टाचार भेंटवार्ता हुई। भेंट के दौरान नेपाल की डिजिटल प्राथमिकताएं, समावेशी कनेक्टिविटी तथा सतत और सुलभ सूचना प्रविधि विकास सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। स्वास्थ्य एवं खाद्य स्वच्छता मंत्री निशा मेहता स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित 79वें विश्व स्वास्थ्य सभा में भाग लेकर आज स्वदेश लौट आई हैं। वहीं जेट 3 गते 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए इस सभा में भाग लेने के लिए गई थी। मंत्रालय के सह प्रवक्ता डॉ. समीर कुमार अधिकारी के अनुसार सभा ने मंत्री मेहता को उपाध्यक्ष के रूप में नामित निर्वाचित किया है, जो नेपाल की स्वास्थ्य कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बढ़ती उपस्थिति के लिए एक बड़ी उपलब्धि और सम्मान माना जा रहा है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से सावधानी बरतने की अपील की है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, देश के अलग अलग हिस्सों में तापमान लगातार बढ़ रहा है और इसके साथ ही दैनिक जीवन में गर्मी से होने वाली कई कठिनाइयां भी बढ़ रही है। मैं सभी देशवासियों से आग्रह करता हूं कि जितनी अधिक सावधानी बरत सके अवश्य बरते। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार द्वारा चालू आर्थिक वर्ष का आर्थिक सर्वेक्षण संघीय संसद में प्रस्तुत। नेपाल की अर्थव्यवस्था के 3.85% विस्तार का अनुमान। देश के आर्थिक और सामाजिक सूचकों में सुधार हुआ है, अर्थमंत्री डॉ. स्वर्णिम वागले का कथन। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने जेएनजी आंदोलन संबंधी जांच प्रतिवेदन के क्रियान्वयन के लिए सरकार को भेजा पत्र। और भारत में भीषण गर्मी की चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से आवश्यक सावधानी बरतने की अपील। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।
4: फोर्जी LTE मोबाइल सेट सम्बन्धी नेपाल टेलिकमको सूचना। नेपाल टेलिकमले देशभर VoLTE सहितको अत्याधुनिक 4G LTE नेटवर्क विस्तार गरिरहेको हुनाले 4G गुणस्तरीय इन्टरनेट तथा कल सुविधा प्राप्त गर्नका लागि नयाँ मोबाइल सेट खरिद गर्दा सेटले LTE ब्यान्ड 20 800 मेगाहर्ज र VoLTE सपोर्ट गर्ने यकिन गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।